मुजुत कवागुरिति हज सुमुसुत पक्युनि जान्देजु तबिनाय कुङावि नकसिबात दङ सुबाबृति उबात दि बुङा कुदिप दातुपात माइकल पक्युनि जान्दि लुसिया मन्दुक पियन्दम मन्दम कुइजियाउ दि एभलिन नम नकि इक्लेरिस एभलिनि बिन क्लेरिस पानुल पक्युनि जान्दि फ्लोरिता किनाजियो Iya, hazau dah kumat tahu napa? Duva, makiu ni dah hazau di Boyd Mojun. Jadi pihi kuiti tu makiu ni zan dia kada kohdong dega. Hansan pengawi Flora Kunus ami Jos Siguan. Ina kau tak kau hazau di ti.